रे आज बिन सुन लो हमारी।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

भजन करो हरे जगत जगतारे भजन

0: चुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभकल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम बार बार जिक्र करते रहे चले आ रहे हैं ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हो और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हों और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नज़रिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभकल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति

0: उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता के वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पे बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.7 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचय 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत 7वें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत ने शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। इनमें से समुन्नत शहरी केंद्र, कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अच्छादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदियों पर प्रकाश डालेंगे, चूंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण सुरक्षा। बने रहिए आपके अर्जे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: पर्यावरण बचालू भैया मान लो कही

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, ख़ास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं या फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितधारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है, जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व

0: पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितधारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और यूएन हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपवृष्ट प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं और जन भागीदारी के हितधारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों, इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं, पर्यावरण जुड़ा। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: एक

0: भैया पेड़ ना कटाइयो। अभी आपने मस्ताना, दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों, अभी भी इस समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहाँ पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं। शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार का क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए? भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की दशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत, PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरियों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नलजल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी, इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्यनीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वस्थ एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके। परंतु इन हरित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम सुपकल के माध्यम से बताने जा रहे थे, और भी बातें हैं जो चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम सुपकल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-14-17-26। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हेंगे और नमस्कार सब साथियों को।
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दे करे कम से कम हमें, आप बीच बीच में टोक देते ही, मतलब का है तुम बात कर रहा था अपने साथ।
1: नहीं नहीं, हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी। अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो।
0: हाँ वो तुम
1: हमारे। नहीं
0: कह दू
1: नहीं, हमारे युवा साथी ये सोचत हेंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आत हेंगे।
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी देंगे। नहीं हाँ। नहीं, जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है, हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे, तो आज जी कैसे पहले भूल गई ये बात को, तुम्हें बुरा लगा हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात, और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती है जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछत हेंगे

0: के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव कर रहे को काय से कई वर्ष हो गए हैं, 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम हो, और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी, वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, हम तो होंगे ही कामयाब, लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे, चाहे वो व्यवसाय हो
1: अरे बस
0: चाहे
1: बस
0: वो
1: बस बस मनीष भैया बस बस, बहुत ज्ञान देते हैं आप, इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगा कि कितों बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए
0: जो
1: हैं।
0: कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम, और जहां मैं अपन सुनाते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
1: ये यानी
0: और
1: के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
0: हाँ, और जब कार्यक्रमन में हम जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम रखेंगे, तो उन कार्यक्रमन में हम अपने साथियों को, चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी, बाकी लाने भी, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, व्यक्तित्व विकास जो रहता है वो, यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है, आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचात होगे, कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था जिस चीजन को सीखने में, यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो, तो नौकरियन में जिस चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो, और तभी हम आगे बढ़ सके, तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक
1: वाह
0: दिन।
1: वाह वाह वाह। लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता के बारे में रहे,
0: नहीं, हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहा है,
1: इको
0: ले ओ
1: मतलब
0: हमारे बहन को
1: पूरा
0: एक फोन आ रहा
1: कॉन्सेप्ट
0: हो,
1: बता दो।
0: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, दे का सलाह दे रही हैं, इनको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे, एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैंगे,
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन, हम अपने साथी उनको बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है, जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे, तो वहां जो सीख मिलत हैगी उनके जो अनुभव रहते हैंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैंगी।
1: अब वो फोन
0: रूपा,
1: कटकाओ, आप काय में से उठा रहे हैं
0: चलो
1: अब।
0: हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैंगी, चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैंगे, तो उनके अनुभव को साझा कराते हैंगे,
1: तो बात तो हम ही करें, आप फोन ना करें दे हम
0: चलो
1: लेके।
0: आप ही कर लो, रूपा जी का तो फोन है वो, आप ही बात करो।
1: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानी पुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है। टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब
1: अच्छा, यानी कि
2: आगे।
1: आप सिलाई का काम कर रही हैं, तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: जिला टीकमगढ़ में हमने
1: जी
2: केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था,
1: जी
2: वहाँ पे हमने 1 महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम रानीपुरा गांव में, वहां से फिर सिलाई सेंटर खुला, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
1: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं।
1: जी तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
2: जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से, उनसे
1: जी
2: हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, फिर 1 महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है।
1: जी तो आपने जब अप्लाई किया था वहां पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा,
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे
2: नहीं
1: नहीं
2: कोई
1: लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठी है खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए?

0: ये, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे और बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना
1: धन्यवाद।
0: चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसा हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में 1-2 ब्लाउज सिले तो बन जाते हैं 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे? अच्छा, आगे
1: बता रहे
0: बढ़ाएंगे।
1: थे, हाँ
0: जी बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है, अभी तो ऐसी पुराने चीज थी ना उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिल लेके सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
1: नहीं है,
0: लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया, आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे कुछ, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे दीदी,
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें, कल
0: जी
1: कल जाके हम बाजार में ले तो सकें, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सकें। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब,
0: जी
1: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि
0: जी
1: ये चीज क्या है, तो
0: जी
1: हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
1: नहीं,
0: इससे
1: एक
0: ज्यादा
1: महीने
0: समय
1: में
0: लगा?
1: नहीं किया अभी, नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया,
0: जी
1: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीने, 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए।

0: गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है, तो
0: अच्छा,
1: अभी तो कोई नहीं आता। अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे? आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिल दे रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पाए? अगर घर ही में है ना इंसान, तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो, आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे,
0: जी
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई, और सब अच्छे
0: जी
1: जो है एक घर में सब सारे मिलके चले। तो
0: जी बिल्कुल, आपके कहने
1: पहले
0: का मतलब
1: सुन
0: है कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं, बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ, ताकि हम दो पैसे कमा सके। हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं, गांव छोड़ के
0: जी,
1: बताओ।
0: बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
1: हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच
0: जी,
1: गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: के लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा है, बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
0: जी,
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल
1: बस
0: रूपा
1: ऐसे
0: जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे, ठीक है?
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार। रेडियो
2: बुंदेलखंड। काय वर्षा, तुम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं।

0: रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें। आपको तो शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और
1: हाँ
0: व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: हाँ बस
0: भाई
1: तो
0: हम सोच ही
1: मतलब
0: रहे थे हम कमे आज कौन सा व्यवसाय दें कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई दी कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैं, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी जा हैगी कि अपन हो रहे सीख तो ले थेंगे। मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे होते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना सीख भी सुबह बहुत है ना नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहा थे को सो चले तो जा सीख भी। लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाते।
0: बिल्कुल
1: तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो RCET सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी। लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घरे जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो। कि आपने वो 1 महीना या 4 दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे और सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत। एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती। हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती जैसे अचार बरी को काम है अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
0: अरे ज्ञान की देवी अब तो
1: हाँ
0: नक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो उनको, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
1: हाँ
0: और
1: मतलब
0: ज्ञान
1: तुम
0: लेके।
1: तुम्हें बोलन दो सो कछु नहीं है
0: नहीं नहीं
1: तुम
0: नहीं
1: बोला
0: अपन
1: तराओ।
0: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सौ गजल खो अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे गो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकते हो, कह गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथ ही
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे, जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ, और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जाना
1: है,
0: थे
1: नहीं, जाना तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाना है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाको डाउनलोड करो और चाँ जितने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकते हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप। काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसे शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग

0: हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।
1: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: आओ बहनों, हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।
2: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
2: सरपंच पंच

हम सबको समझाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको

0: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक
0: हम सब

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
5: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
6: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पर, तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है, और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए, और क्रियान्वयन मतलब उस योजना तैयार

0: होना ही बड़ी बात नहीं है। विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पे जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए ये तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेके सरकार ने इतना बड़ा समर्थ स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम कि ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, साहब हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425141726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

पढ़ रहे हैं जो फिल्में हैं जो अखबार में नहीं है। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथियों, काफ़ी दिनों से हम इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी अब आने वाले समय में अपने कृषि में बदलाव की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती किसानी में बदलाव किया जाए ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं, जब तक हम कुछ नया नहीं करते हैं तब तक हम जो हम लागत लगाते हैं और उसका खर्चा होता है वो मिला जुला रहता है। तो हमें ऐसी खेती, ऐसी पद्धति के लिए आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा ताकि हम एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं अपनी खेती किसानी में। हमारे बहुत से युवा साथी जो खेती पर निर्भर भी रहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे किसान साथी खेती पर निर्भर रहते हैं और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि

हम दो फसलें वो करते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन फसल रहती है उसको भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये दो फसल, एक तो गेहूं की फसल करते हैं, एक धान और मूंगफली की फसल करते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि दो फसलों में किस तरीके से गुजारा चला जा सके। तो आज एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ा समझने वाली बात होगी किस तरीके से इस पद्धति को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग ला सकते हैं। कई हमारे ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो नई नई पद्धति से अपनी खेती को कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर अगर इस तरीके की हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, हमारे पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। तो आइए पहले सुन लेते हैं इस चर्चा को।

0: एरोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के इस्तेमाल के बिना फसल को उगाया जाता है। इस तकनीक के जरिए पौधों को उगाने के लिए हवा या धुंध का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों के घोल को सीधे उनकी जड़ों पर छिड़का जाता है। क्योंकि इसमें मिट्टी शामिल नहीं होती, इसलिए मिट्टी जनित रोगों और कीटों का खतरा काफी कम हो जाता है। एरोपोनिक खेती ग्रीन हाउस में की जाती है, जिसमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता सहित बढ़ती परिस्थितियों पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता है। एरोपोनिक विधि से उगाए गए पौधे अक्सर मिट्टी में उगाए गए पौधों की तुलना में तेजी से बड़े होते हैं।
1: ये जो टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक्स, ये जो नासा है, जो अमेरिका की एक संस्था है नासा, उसने इसके ऊपर कुछ साल पहले काम करवाया था अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स, उनके वैज्ञानिक जो स्पेस में जाते हैं, तो उनका सोचना ये था कि स्पेस में, क्योंकि उनको ताज़ा भोजन, खासतौर पत्तेदार जो लेटस वगैरह है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था कि थोड़ा सा पानी उनके पास होगा, कुछ बीज होंगे, और वहाँ पे जो जड़ों के ऊपर स्प्रे करके वो खुराक दे के, तो इस तरह से कुछ ताज़ा भोजन पैदा कर सकते हैं अपने वैज्ञानिकों के लिए। उसी जो प्रिंसिपल को, उसी जो एक तरह सा जो एक साइंस का प्रिंसिपल है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये एरोपोनिक्स का विस्तार, इसका जो कहिए और साइंस इसके ऊपर की गई है, खोज की गई है, ताकि उसी जो प्रिंसिपल को, उसी विधि को आलू के लिए यूज कर सकें, आलू के लिए इस्तेमाल कर सकें।
0: एरोपोनिक खेती की तकनीक दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। खास तौर पर शहरी वातावरण या उन स्थानों के लिए ये तकनीक आदर्श मानी जाती है जहां स्थान सीमित है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपके पास अपने छोटे से बगीचे या छत पर कोई जगह है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने भोजन को उगाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी आधारित खेती की तुलना में खाद्य उत्पादन की यह टिकाऊ विधि 80-90% कम पानी का उपयोग करती है। मिट्टी की अनुपस्थिति, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की यह तकनीक खेती के भविष्य के रूप में उभर रही है।
2: कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की जो भूमिका है वो हमेशा से ही काफी अहम रही है। नई मशीनों की बात हो या फिर आधुनिक तकनीकों की बात हो, इनके बारे में जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने में इनका हमेशा से ही अहम योगदान रहा है।
0: एरोपोनिक का सीधा सा मतलब है हवा में उगना। एरोपोनिक सिस्टम में कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें खुले जड़ क्षेत्र के वातावरण में स्वतंत्र रूप से लटकी रहती हैं। एरोपोनिक सिस्टम के विकास कक्ष को पानी, पोषक तत्व और हवा की आदर्श मात्रा प्राप्त होती है।
1: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आलू, गेहूं और धान के बाद तीसरे नंबर पे जो फसल है, जो हम लोगों के भोजन का एक हिस्सा है, और बहुत मात्रा में आलू का हमारे खान पान में इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 60 मिलियन मैट्रिक टन्स, या ये कहें कि 600 लाख जो टन आलू इस कंट्री में, इस मुल्क में पैदा किया जाता है, और 60 मिलियन मैट्रिक टन का जो आलू जब पैदा करना है, तो लगभग 7-8 मिलियन मैट्रिक टन्स जो हमें बीज की जरूरत पड़ती है।

0: है। इस बीज को पैदा करने के लिए जो रिवायती सिस्टम है बीज पैदा करने का आलू का, जो कि आज भी चल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक लोग सबसे पहले ब्रीडर सीड पैदा करते हैं, उसके बाद फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और उसके बाद सर्टिफाइड बीज पैदा करके किसानों तक पहुंचाया जाता है। वो जो बीज है वो कई सालों से वो बीज बन रहा है, लगभग 40 सालों से बन रहा है इस कंट्री में। लेकिन वो बीज वैज्ञानिक लोग जितना बनाते हैं वो बहुत मात्रा बनाते हैं, पर पूरे कंट्री की जो पूरे देश की जो बीज की ज़रूरत है उससे पूरी नहीं होती। तो जो सप्लाई और जो डिमांड है या मांग है उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है, गैप था, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है एरोपोनिक्स टेक्निक के आने के बाद। तो उस बीज की जो जो कमी है बीज की, उसको पूरा करने के लिए दूसरी तकनीकें जैसे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक और एरोपोनिक्स टेक्निक, इसी तरह से एपिकल रूटेड कटिंग की जो टेक्निक है, जो और भी कई जो नई नई टेक्निक्स को साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया है।
1: मिट्टी की अनुपस्थिति में, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की तकनीक को एरोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। एरोपोनिक खेती का उपयोग कई प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे सब्जियां, फल और फूल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इनके संस्थान में इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले सीड का उत्पादन किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इस तकनीक की खासियत ये भी है कि सीड का उत्पादन अन्य विधि के मुकाबले बड़ी तेजी से होता है।
2: सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कि कहेंगे कि वर्ल्ड रिनोन टेक्निक है, एरोपोनिक है। एरोपोनिक में हम जो डिजीज फ्री सीड, बिना बीमारियों के अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसका जो एक खास बात यह है कि वो सीड की जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब वो सीड बढ़ाना, वो बड़ा फास्ट है। अगर एक प्लांट से बहुत सारे ट्यूबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक एरोपोनिक टेक्निक है जो हमारे पूरे कंट्री में अभी फैली हुई है, और जहाँ पे भी एरोपोनिक लग रहा है, लगभग हमारे ही जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू ही वो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ये हमारी एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स है।
3: आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1,00,000 से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।

0: तकनीक की संपूर्ण जानकारी होने से उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने में मदद मिलती है। बता दें आपको कि हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आधुनिक तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एरोपोनिक तकनीक की बात करें तो इसके बारे में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं और धान जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर जितनी पैदावार होती है, लगभग उसके बराबर ही आलू में प्रति हेक्टेयर बीज गंध की आवश्यकता होती है। वहीं आलू में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता हमेशा ही आवश्यकता से कम रही है। ऐसे में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आलू के बीज उत्पादन का प्रयास किया जाता रहा है। पारंपरिक विधियों द्वारा आलू के बीज तैयार करने में कई कई वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में कृषि संस्थानों द्वारा और वैज्ञानिकों की कठिन प्रयासों के फलस्वरूप आलू के बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से प्रति पौधा 40 से 50 छोटे कंद मिलते हैं। यह पारंपरिक आलू बीज उत्पादन की विधियों से संख्या में 10 से 12 गुना अधिक होते हैं। इस विधि में बीज कंदों को हर चौथे पांचवे दिन तोड़े जाने के कारण इनके आकार में समानता बनी रहती है। आवश्यकता अनुसार तोड़े जाने वाले आलू का आकार भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इनकी एक समान बिजाई करना भी आसान रहता है। एरोपोनिक में पौधों को हवा में ही उगाया जाता है, इस कारण मृदा जनित रोगों के होने की आशंका नहीं होती। खेत से प्राप्त होने वाले आलू बीज कंदों की अपेक्षा एरोपोनिक से बीज कंदों की प्रति पौधा पैदावार लगभग दुगनी प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त एवं एक समान होती है। इस विधि में छोटे आकार के बीज आलू कंद होने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना भी सुविधाजनक रहता है। मिट्टी की तुलना में एरोपोनिक विधि में सिर्फ 5 से 10% पानी और 10 से 15% पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस विधि को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी

0: जो आलू का किसान है उसको बीज पैदा करने के लिए जो बीज चाहिए, जिसको हम प्री बेसिक सीड बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में एक साल में एक पौधे से कई सौ पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। और वो जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, ये एरोपोनिक्स की विधि से पहले वो मिट्टी में लगाए जाते थे। और वो जो एक पौधा था वो 6 से लेके 8 9 आलू के कंद पैदा करता है। टिश्यू कल्चर से पैदा किए हुए कंद को बोलते हैं मिनी ट्यूबर, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मिनी ट्यूबर। अब ज़रूरत ये थी कि वो मिनी ट्यूबर की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए, और उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए इस टेक्निक जिसको एरोपोनिक्स बोलते हैं, इसका इजाद हुआ। और वही पौधा जो टिश्यू कल्चर का पौधा था, जब मिट्टी में लगाया जाता था नेट हाउस में, नेट हाउस इसलिए कि उसमें कोई भी कीट पतंगा जैसे कि सफ़ेद मक्खी चेपा ना आ पाए, सफ़ेद मक्खी और चेपा और या दूसरे कीट उसमें वायरस रोग का फैलाव करते हैं, उससे बचने के लिए नेट हाउस में जो पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए जाते थे। अब वैज्ञानिक लोगों ने ये सोचा कि उसी पौधे से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें 6 से लेके 8 की बजाय बहुत ज़्यादा मात्रा में कंद बने, जो मिनी ट्यूबर ज़्यादा बने। उसी सोच के तहत ये एरोपोनिक्स विधि का विकास हुआ, इसके ऊपर काम किया गया। बेसिकली जो एरोपोनिक्स जो है, ये दो अंग्रेजी का शब्द है एरोपोनिक्स, एरो का मतलब हवा, पोनिक्स का मतलब कोई भी आप पौधे को हवा में उगा रहे हैं। तो एरोपोनिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस में, जिसमें के आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, उधर पंखे चल रहे हैं और मेरे पीछे जो एक पैड सिस्टम है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं।
1: जैसा कि हमने जाना, एरोपोनिक खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं होता, इसके बजाय ग्रीन हाउस में तैयार किया जाता है। पौधों की जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, बल्कि वे हवा में ही लटकती हैं। वैज्ञानिकों के सुझाव पर ग्रीन हाउस में एरोपोनिक फार्म तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी ढांचे में LED लाइट, पंप, मिस्टिंग नोजल, हाइड्रोपोनिक नेट पॉट और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होते हैं। इस ढांचे में लगे फसलों पर एक विशेष तरह के नोजल द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का मिश्रण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्व बिल्कुल संतुलन में मिले होते हैं, जो कि आलूओं की बढ़वार में मददगार होते हैं। पानी का ये मिश्रण समय समय पर ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फसलों पर छिड़के जाते हैं। वहीं ये रोटेशन में भी लगातार बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे लागत में भी कमी आती है।
0: जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरोपोनिक्स में ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये ऊपर से तो सूर्य की रोशनी लेते हैं ग्रीन हाउस की शीट के बीच में से, और ये फसल जो आप देख रहे हैं इस तरह से है जैसे फैक्ट्री में बनाई गई हुई फसल हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही तंदुरुस्त, बिल्कुल एक तरह के सपनों की फसल इसको कह सकते हैं। अब इसी का जो, इसके नीचे कोई मिट्टी नहीं है। जो हम लोग जो रवायती सिस्टम है फसल पैदा करने का, उसमें हमारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती हैं। यहाँ जो ये जो बॉक्सेस बने हुए, ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है और जो जड़ें हैं वो हवा में लटक रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो हवा में लटक रही जड़ें हैं उनको कैसे खुराक दी जाती है। आप ये देखें कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें जब हमने आलू तोड़ना है तो हम इस फसल को पूरा ऊपर उठा लेते हैं। जिस समय आलू की जो मिनी ट्यूबर की पिकिंग या हार्वेस्टिंग या तुराई होनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आलू जड़ें लटक रही हैं हवा में, और इसीलिए इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। और ये आलू लगे हुए हैं, ऊपर कंद लगे हुए हैं, तो हर तीसरे चौथे दिन इन जो जो कंद है, जैसे आज ये इनकी पिकिंग हो चुकी है, और नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इनकी पिकिंग, जैसे ये 2 से 3 ग्राम का आलू हो जाता है तो इसकी पिकिंग कर ली जाती है। और नीचे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली चल

0: है, हर जो सेट टाइम है 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ से खुराक की स्प्रे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे ही टाइम आएगा इसके स्प्रे होने का, ये ऑटोमेटिकली स्प्रे होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप इस तरह से जड़ों को टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनका रंग कैसा है और इनका जो आलू नए बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो एरोपोनिक्स है, हवा में जिसका होना हम कह सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब ये आपके सामने जब स्प्रे होने का टाइम हो गया और इसके ऊपर जड़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वो सोल्यूशन, वो पानी स्प्रे हो रहा है, जिस पानी में सब तरह के जो पूरे जो जो तत्व है जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम और जो भी कोई खुराक की जरूरत है उसमें पानी में घोल के रखी जाती है और ऑटोमेटिकली जो पंप है इसके ऊपर स्प्रे करता है हर 5 से 7 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये एरोपोनिक्स किया जाता है और ये जो क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इसमें ये जो जो मिनी ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये 1 साल में, जैसे ये यूनिट आप देख पा रहे हैं, तो इस यूनिट में 5 लाख ये मिनी ट्यूबर पैदा किए जा सकते हैं। और इसी तरह जो बने हुए यूनिट हैं अलग अलग, कोई 10 लाख कैपेसिटी का है, कोई 20 लाख कैपेसिटी का, 1 साल में प्रोडक्शन का ये सिस्टम है। और ये सब कुछ भारतवर्ष में ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, सब कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इसकी डिज़ाइनिंग की है, इसके प्रोटोकॉल सेट किए हैं और इसका कब फसल लगेगी, कौन सी लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी, कितने दिनों बाद आपने कौन सी खुराक इसको देनी है, ये सारा कुछ CPRI में पिछले 10 से 15 सालों में किया गया है।
1: हमारे देश का किसान बहुत जागरूक है, नई मशीनों के उपयोग की बात हो या फिर नई आधुनिक तकनीकों को अपनाने और उनके बारे में सीखने की बात हो, हमारे देश का जो किसान है हमेशा से ही जागरूक रहता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों से एरोपोनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर हमारे देश के जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं।
2: भारत विकासशील देश है, हमारी वर्तमान सरकार देश को आगे बढ़ाने और खासकर कृषि के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से काम कर रही है। केंद्र सरकार खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही किसान भाइयों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
0: किसान बंधुओं, हमने उधर एरोपोनिक्स में, जो कि ग्रीन हाउस में लगा हुआ पूरा सिस्टम है हवा में आलू पैदा करने का, वहाँ हमने ये आलू, आपने देखा कि इस तरह से हमने वहाँ से ये तुड़ाई करते हैं हर तीसरे चौथे दिन वैरायटी के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं कि वहाँ जब जिस समय तुड़ाई होती है, पिकिंग होती है या हार्वेस्टिंग होती है, उसमें उस समय इनका जो रंग है इस तरह से लगभग सफेद रंग के होते हैं। अब क्या है कि ये जो आलू हैं, जो ये मिनी ट्यूबर्स हैं, ये इसी तरह से स्टोर में नहीं रख सकते 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब इनका छिलका पकाना पड़ता है, इनकी क्योरिंग करनी पड़ती है, या इनको हम लोग कहें कि इनकी ग्रीनिंग करनी पड़ती है, इनको मजबूत बनाना पड़ता है। उस मजबूती के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में एक खास मात्रा में, खास दिनों के लिए, और मतलब लाइट देनी पड़ती है, और लाइट में जब ये रखते हैं तो इस तरह से ये आलू जो है इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका छिलका पक जाता है, ये सफेद से या तो हरे रंग के हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा जैसे ये भूरा रंग है, ये डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है, किस्म कौन सी है। तो अब ये जो 8 से 10 दिन में ये इनका छिलका पक गया है और इनका पूरा अच्छे से ये जो मिनी ट्यूबर ये तैयार है आगे स्टोर में रखने के लिए। अब इस आलू को 2 से 3 डिग्री वाले स्टोर में, यहाँ पे लगभग 7 से 8 महीने स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे इसको रख दिया जाएगा और उसके बाद फिर इस आलू को निकाल के लगभग 20-25 दिनों तक रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, 24-25 डिग्री पे, और फिर इसमें पुंगराव आ जाएगा, इसमें जर्मिनेशन आ जाएगी,

0: और ये जो जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसको खेत में बोया जाएगा। खेत में बोने का भी विधि विधान है, एक तकनीकी है CPRI की, जिसको बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। मतलब कब बोना, कब पत्ते काटने, कौन कौन सी उसमें दवाई का छिड़काव करना, कैसे फसल को कीट पतंगों से बचाना ताकि उसमें वायरस ना फैले। तो फिर ये जो G0 जिसको बोलते हैं या मिनी ट्यूबर बोलते हैं, इसको खेत में जब लेके जाएंगे तो पहले साल ये होगा, खेत में पहले साल में बोलेंगे जनरेशन 1, मतलब पहली पीढ़ी उसकी, फील्ड जनरेशन 1। फिर अगले साल उसका दोबारा से नेक्स्ट अगले साल में जाएगा, जनरेशन 2 होगा, फिर जनरेशन 3 होगा, फिर जनरेशन 4 होगा। इस तरह से जो किसान है उसके पास बीज पहुंचने से पहले G1 जनरेशन 1, G2 जनरेशन 2, फिर G3 G4, वो इस तरह से ये आगे सीड को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का ये है कि ये जो एक एक दाना है, जब खेत में G1 बनेगा, एक के 5-6 बन जाएंगे, जब ये G2 बनेगा तो लगभग आप ये मान के चलिए 50 के करीब बन जाएंगे। जब G3 बनेगा तो 50 को अगर 6 गुना करें तो 300 के करीब बन जाएगा। जब G4 बनेगा तो एक दाने से 1500, 1600, 1700 दाना बन चुका होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक दाने से G4 के 1600, 1700 दाने बन चुके होंगे, जो कि लगभग डेढ़ डेढ़ कट्टे के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज कैसा है। तो इस तरह से ये जो बीज है, एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन जो आलू की दुनिया में ला रहा है। जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे उनकी इस विधि के आने से, ये एरोपोनिक की विधि और इसका जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के साथ जो मिलान होने के बाद, जब ये मिनी ट्यूबर की मात्रा इतनी बढ़ रही है बड़ी तेजी से, अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों को पूरा जो बीज की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है, उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी।
1: एरोपोनिक तकनीक नई तकनीकों में से एक है। भारत में एरोपोनिक खेती सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने इस दशक में खेती में क्रांति ला दी है, जिसे लेकर हमारे देश के किसान भाई बेहद उत्साहित हैं। वे इस तकनीक के बारे में जानकर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि भारत में अभी एरोपोनिक को अपनाने की गति धीमी है, लेकिन किसान इस तकनीक को लेकर बेहद उत्साहित और इसे अपनाकर खेती करने के लिए प्रयासरत हैं।
2: एरोपोनिक सीड सेंटर पोटैटो रिसर्च स्टेशन से मैं गया था, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जे बढ़िया सीड बनाना है तो एरोपोनिक का ही सीड बनाओ। तो मैंने उनसे सीड परचेज किया, तो मैं वो लगाया और तीजा साल हो गया है, तो मैं चौथे साल में उसको बेचूंगा। जो भी फर्ज करो ये एक जो बंदा परचेज करेगा तो उसको पता चल जाएगा थानू कि इसकी कितनी ही यील्ड है।
1: एरोपोनिक खेती की तकनीक अपनी संभावनाओं की वजह से दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। भारत देश में भी इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और किसान भी इससे अवगत हो रहे हैं। जैसा कि हमारे देश में भूमि की कमी है और इस कमी को देखते हुए एरोपोनिक तकनीक में खेती का भविष्य नजर आ रहा है। इस तकनीक से जमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है, साथ ही उपज भी कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। एरोपोनिक तकनीक की मदद से कृषि संस्थान आलू के स्वस्थ और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान इस तकनीक से कम लागत में आलू की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
0: तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी जब दी जाती है किसी किसान को या किसी कंपनी को, तो उसमें लगभग 1 साल से लेकर 1.25 साल तक जो CPRI की वैज्ञानिकों की टीम है उस कंपनी के साथ या किसान के साथ काम करती है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं और आलू की बीज की दुनिया में जो आ रही क्रांति है, उस क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने एरोपोनिक खेती जो एक किस्म का नया आविष्कार भी है और किस तरीके से इस विधि का उपयोग करके हम अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, ये बहुत जानना बहुत आवश्यक था। सो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना, आशा करते हैं कि हमारे किसान साथी, क्योंकि बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते हैं, सरकारी विभाग के अधिकारी रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनसे भी जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए। और चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा ताकि तत्व के बारे में पता चले कि किस तत्व की हमारे खेत में कमी है। साथ साथ में गर्मियों की गहरी जुताई पर भी हमें जोर देना चाहिए और इन नई नई पद्धतियों के बारे में सुनना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लहें। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, दिन न करत भाई अपन ई कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत है भोले राम कुशवाहा जी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत है भजन को।

गिटार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनते हैं फिर से नहीं कि गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिजनार सतावे के मैया मुए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुन भी जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गाए भाए सुर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजावे रे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब यही गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोले राम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

अरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उम्र मोरी बारी। देखो कितनों प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमें अपन सब जन ने सुनो है, ये और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक के संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी गाय और कहना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना

कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले हंसते हंसते